0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
2: Speaking of Sonam Wangchuk, no relief for Sonam Wangchuk's family is what we see, with the Delhi High Court having backed the government's decision to shift climate activist Sonam Wangchuk to Safdarjung Hospital, ruling that the move is not arbitrary given his deteriorating health after an extended hunger strike. The court also rejected the claim that Wangchuk was being detained or that his bodily autonomy was being violated. Wangchuk's family will challenge this order, and the case will now be mentioned before Chief Justice of the Delhi High Court on Monday. Sonam's wife, Gitanjali Angmo, has moved the Delhi High Court seeking his transfer from Safdarjung Hospital to a private hospital. The petition by Sonam's wife alleged that he was on the 21st day of his peaceful hunger strike at Jantar Mantar and was illegally and unlawfully detained under the pretext of medical intervention. The High Court has issued a notice to the government police and hospital authorities and directed them to file a status report within the next 3 days. And because of the same reason, the matter will now be heard again on Thursday. In a social media post, meanwhile, Sonam's wife has also alleged discrepancies in the hospital's assessment of Wangchuk's potassium levels. But the court has taken note of submissions that his blood sugar and potassium levels were low, with potassium levels in fact being described to be dangerously low in the medical reports.
3: वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटेरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए। आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुड़ जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे।
4: He continues to remain fully conscious, alert. His vital parameters like blood pressure, pulse rate, saturation remain normal. But there is some minor deviation in his lab parameters, because of which we are giving the required treatment at our hospital. But he continues to remain on fast, therefore he is very weak and also can lead to deviation and complications. Therefore, we feel, which is the combined team of All India Institute and Safdarjung Hospital, we feel he needs to be continuously monitored and be prepared for any intervention that may be required to maintain his good health.
2: The gloves are off and the daggers are drawn. Well, the opposition is gearing up for a fiery monsoon session, and it is not leaving any stone unturned to corner the government over the Ram Mandir Chanda Chori issue. They've launched a strong attack on the government over the alleged embezzlement of donations at the Ayodhya Ram temple. And Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge have even written to the Prime Minister right ahead of the session, demanding a thorough and independent probe. Now, this letter has already set the tone for the monsoon session. So take a look at this news report, which brings to you all that's happened so far. Ahead of the monsoon session, the opposition is gearing up to corner the government over the Ram Mandir donation scam. In a joint letter, Leader of Opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and the Congress President and the Leader of the Opposition of the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, have demanded a high-level investigation into the alleged theft. The Congress leaders claim that Ram Bhakt, who donated their hard-earned income with faith, are feeling betrayed by the theft.
5: In the letter, the Congress stalwarts pointed out that while the Prime Minister announced the formation of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the Parliament, all its members were appointed solely by the government. Opposition has highlighted that all the members of the trust were from the RSS, VHP or its affiliates. Rahul and Kharge also questioned the Prime Minister's silence on the very issue.
6: ये भारतीय जनता पार्टी इसकी सरकार ने भगवान राम को धोखा दिया है उनका चंदा ही नहीं चुराया उनकी विश्वास और आस्था पे डाका डाला है और इसीलिए सबसे ज्यादा पहले मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा
5: The special investigation team probing the Chanda Chori is expected to submit an interim report to the Supreme Court on Monday. Police intensively questioned the key accused Ram Shankar Yadav alias Tinnu and his nephew Manish Yadav. During the grilling, both the accused admitted to stealing donations. Tinnu even admitted to misusing Champath Rai's ID to issue VIP passes for Ram Mandir. While Manish used the theft money to organize bhandaras, buy expensive gifts and land. Police are now examining all those involved in the temple's daily operations. Police lens is on the 50 people involved in counting currency donated by the devotees at the temple. The temple trust will be holding a crucial executive committee meeting in Ayodhya on July 22, 2026. The meeting is set to appoint the temple's first full-time CEO, reconstitute 5 internal committees and review the final probe report regarding the alleged embezzlement of temple donations. The opposition is determined to corner the government on this sensitive issue. The big question remains who will respond to the opposition's attacks on the issue. Bureau Report, India Today.
2: The opposition staged a dramatic walkout from the all-party meeting after the government invited a rebel faction of the TMC, whose MPs have announced their merger with the little-known Nationalist Citizens Party of India. Opposition also protested against Lok Sabha Speaker Om Birla's decision to allow separate seating for the 20 rebel TMC MPs. Kiran Rijiju, on his part, made an appeal for constructive debate during the monsoon session of the parliament. Parliamentary Affairs Minister shifted the onus of smooth functioning of the House on the opposition. Meanwhile, the recognition of the rebel UBT MPs and rebel TMC MPs have stirred the numbers game. The developments have strengthened the NDA's tally, taking its number to now 318 in the lower house of the parliament.
7: संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है, इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें सहयोग करें पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले मैं भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले ये सब चाहते हैं देश का जनता चाहते हैं हम सब भी यही चाहते हैं पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है ये सिद्ध हो गया है इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है, इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को, विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे, और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे।
8: और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ, वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 MP को।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: एनडीए की ताकत बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और एक समर्पित भाव से वो देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक भी छुट्टी 12 साल में नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री देखा है आपने? और आज देश आगे बढ़ रहा है, आज देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डगमगा चुकी है, ऐसे परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ाना ये गौरव नहीं है? और इसलिए एनडीए मजबूत हो रहा है और हमारा भी फर्ज है। हम एनडीए के घटक दल है, हमारी पुराना गठबंधन है, हम भी चाहते हैं एनडीए मजबूत हो।

0: sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट अरे बाबा, उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं अरे बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: अरे गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन है?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है? सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।
4: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: So sorry.
3: उठाले रे देवा उठाले मुझको नहीं इनको अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का
4: हेलो क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है
3: अरे नहीं रे ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है गलत नंबर लग गया तेरे को अरे पीटर
4: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है
3: हलकट तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको वो ऑटो पायलट अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा
4: हेलो क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है
3: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा रख फोन रख अरे राजू मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा
5: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं
3: अरे एक काम कर इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा इंजन बंद कर दे इसका मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं अरे बाबा
5: लेकिन सर ये हॉर्मोन्स खोल ही नहीं रहे अभी भी
3: मार मार साले को दोनों वाइपर तोड़ दे एक काम कर इसका पूरा तेल निकाल ले ये ले पाइप डाल एक से गैस निकाल एक से तेल निकाल
5: और तीसरे पाइप से
3: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा वो दुश्मनों के लिए है उससे कुछ नहीं आएगा ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा
4: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है बड़ी शोर मचा रही है
3: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा क्या मस्त जोक मारा आपने
5: अरे कौन अरे हेलो
4: क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं
3: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे सीज फायर वाला या धमकी वाला एक काम करने का दोनों भेजने का दोनों एक अगले साल ले लूंगा मस्त भेजने का

0: न्यू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो चौमुखी विकास की ओर बढ़ा है, हर सत्र में आप एक ऐसा कहते हैं ना, हर सत्र में देश को उपहार मिलता है। हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको देश का विकास पसंद नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी पे विश्वास नहीं, चर्चा पे भी विश्वास नहीं। हमेशा लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चर्चा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे घटना करते हैं कि वो बाधित हो जाए, सदन बाधित हो जाए।
1: विपक्ष ने साफ साफ अपने तरफ से कहा कि सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे।

Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
1: एनडीए की ताकत बढ़ रही है क्योंकि मोदी जी पर लोग विश्वास जता रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और एक समर्पित भाव से वो देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ा रहे। एक भी छुट्टी 12 साल में नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री देखा है आपने? और आज देश आगे बढ़ रहा है, आज देश आर्थिक महासत्ता की ओर जा रहे हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह डगमगा चुकी है, ऐसे परिस्थिति में भारत को आगे बढ़ाना ये गौरव नहीं है? और इसलिए एनडीए मजबूत हो रहा है और हमारा भी फर्ज है। हम एनडीए के घटक दल है, हमारी पुरानी पुराना गठबंधन है, हम भी चाहते हैं एनडीए मजबूत हो।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: sorry.
1: उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा। इंजन बंद कर दे इसका, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं अरे बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन आ रहा है?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है? सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा। मस्त भेजने का।
4: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Some of the pictures I'm about to show you on this special broadcast are very disturbing, and we urge viewer discretion. Some of these are viral images that will form a part of Delhi police investigations into reports of attacks on Delhi police and Central Armed Police Forces in the national capital during this morning's Cockroach Janata Party protests. I want you to look at one picture in particular. Watch this video of the mob singling out a police official in uniform. Watch that image very carefully. A police officer is singled out, he's surrounded, and then he's thrashed. He's dragged to the ground and then assaulted. And this assault has been caught on camera. And this isn't the only assault that's been caught on camera. There are multiple videos of stone pelting on the security forces, including some where policemen were injured and are bleeding. Delhi police is now examining this footage. And on the basis of this footage and their investigations, we are told FIRs, or the first information report, is being registered in two incidents of stone pelting, attacks on police personnel, other acts of violence and vandalism during the CJP protests. Now, Cockroach Janata Party carried out a protest. The Delhi police, we are told, is registering multiple FIRs based on complaints they're receiving from different places. And more than 70 people, as of now, have been detained for questioning. That's the latest information that's coming in. More than 50 Delhi police personnel and Central Armed Police Forces personnel were injured in the mob violence. And all the CCTV images, mobile video images, viral videos, they are being compiled, they are being analysed, and those who are responsible for this violence, they are being identified. Several Delhi police and CAPF personnel were injured. A number of vehicles were damaged. Both public property was damaged, as you see in those images, and private property was damaged. There were instances of vandalization that took place and vandalism that took place near the Parliament Street police station. Protesters were seen pelting stones at the Delhi police and the RAF, the Rapid Action Force, near Delhi's Hanuman Mandir, Connaught Place's Hanuman Mandir. Visuals show relentless stone pelting directed at Delhi police and CAPF, Central Armed Police Force personnel. Security forces were forced to respond. Smoke canisters, or tear gas as we know them, smoke canisters were fired to disperse the protesters. Delhi police say there was a systematic campaign to spread rumours and incite passions. There were rumours on social media that a 12-year-old child was assaulted. Delhi police insist no children were assaulted. There were reports of multiple protesters being taken into custody and being injured. I'll get you much more on the rumour mongering, some of the social media handles and where these social media handles have been traced to. Listen in to the Delhi police. I'll get you much more on this big story.
1: दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है. सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें. जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें.
2: आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज यहाँ पर आप कर रही है. ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पार्लियामेंट थाने के बाहर. इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जो जो प्रोटेस्टर है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे. पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है. अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. रह रहकर टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी गई है और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके। ये जो मेन इलाका है सबसे ज्यादा प्रोटेस्टर यहीं पर जमा है, क्योंकि ये जो जंतर मंतर से अगर आप ये देखें अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अब ये पत्थर भी पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे ये देखिए पत्थर वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। सीधे हम आपको जंतर मंतर और जो पार्लियामेंट थाना वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ है ये कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट की तरफ जाए और पुलिस की यही कोशिश है कि ये प्रोटेस्टर जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ न जा पाए। तो लगातार अगर देखें तो पुलिस यहां पर हल्का बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े जा रहे हैं लगातार।
0: And amidst the clashes, the government has opened a channel of communication with the Cockroach Janata Party. Union Health Minister JP Nadda, earlier today, he met the CJP delegation in the national capital. Following this meeting, CJP representatives Saurav Das and Ashutosh Ranka, we are told they've submitted a written memorandum to the Union Health Minister. They've reiterated their demands. Their core demand remains the release of activist Sonam Wangchuk, with no restrictions whatsoever on his movements. The CJP also reiterated the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. They are also seeking a compensation of 1 crore each for the next of kin of the NEET aspirants who died by suicide after the NEET 2026 paper leak. The CJP requested that the Delhi police should stop using force against the protesters and not register cases against them. CJP Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke, who'd gone on a hunger strike after the detention of Sonam Wangchuk, ended his fast after this meeting. So listen in to CJP spokesperson Saurav Das after submitting that memorandum to Union Health Minister JP Nadda. I'll get you more on that story.
3: देखिए, दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे तीन डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर टू, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha joining us with the latest on this big story. Arvind, Delhi Police ki prarambhik jaanch mein abhi kya nikla hai? Is samay Rajdhani Delhi ki kya sthiti hai aur prarambhik jaanch mein abhi tak kya nikla hai?
2: देखिए गौरव, इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ और सुबह से इंडिया टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई फुटेज मिले हैं जिसमें मॉर्निंग में स्टोन पेल्टिंग हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, सीएपीएफ के जो जवान हैं उन पर अटैक हुआ। वो वीडियोस भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। फिलहाल जो उग्र भीड़ थी उसको डिसबर्स किया है मिनिमम जो बल प्रयोग है उसका इस्तेमाल करके। और अब बात की जाए नई दिल्ली इलाके की तो कुछ जनपद के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास प्रोटेस्टर जमा है और बहुत मुमकिन है कि उनको भी डिसबर्स कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीसफुली जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से इजाज़त है, वो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आज पूरे दिन भर की बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस पार्टी और सीएपीएफ पर अटैक हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रही है जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर। उसके अलावा इस मामले में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इस सबके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई थी उसको आखिरकार कोई गाइड करने वाला नहीं था जब वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जनपद के आसपास जो बड़े बड़े शोरूम है उस पर अटैक कर रहे थे, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, तब उनको कोई काबू करने वाला नहीं था। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर थे वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और जब उनको लगा कि अब जरूरी है इनको डिस्बर्स करना तभी किया गया। 5 जो सीनियर आईपीएस है वो भी इंजर्ड हुए हैं, 50 से ज़्यादा जो पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिला दें तो 50 से ज्यादा जो जवान है वो इंजर्ड है। और
4: अच्छा, लेकिन ये बताइए वो जो हमने तस्वीरें देखी अरविंद कि दिल्ली पुलिस का घेरा तोड़ते हुए ये भीड़ है जो संसद के पास तक दौड़ी, एंड आई वांट टू शो यू इमेजेस फ्रॉम इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी केम रशिंग। आई वांट यू टू लुक एट दोज इमेजेस इनसाइड पार्लियामेंट, यू हैड पार्लियामेंट सिक्योरिटी दैट वाज रशिंग टू शट द गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अरविंद, क्या ये अंदेशा था कि वो संसद के अंदर घुस सकती है भीड़ और इसीलिए वो पार्लियामेंट के दरवाजों को, संसद के दरवाजों को ताला लगाना पड़ा? वो वाली तस्वीरें दिखाइए।
2: अब बिल्कुल देखिए गौरव, और जिस तरह की भीड़ थी और संसद मार्च का ऐलान था, और जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये बता दिया था कि बीएनएस 163 यहाँ पर लगा हुआ है, पार्लियामेंट का मानसून सत्र वो चालू है, ये इलाका बेहद संवेदनशील है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। बावजूद इसके एक सुनियोजित भीड़ चारों तरफ इकट्ठा थी नई दिल्ली के इलाके के और खास तौर से संसद मार्ग, संसद भवन की तरफ जाने वाले रोड पर, और वो संसद भवन की तरफ आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वो एक जगह पर रुके थे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको रोके हुई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होकर जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन पर टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उनको काबू में करने की कोशिश की गई और बाद में उनको डिस्बर्स किया गया। लेकिन ये बात सही है कि शास्त्री भवन, रेल भवन जो चंद कदमों की दूरी पर है संसद भवन से, वहां तक कुछ प्रोटेस्टर पहुंच गए थे, इस वजह से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस की सेल छोड़नी पड़ी और जो प्रोटेस्टर है उनको वहां से भगाना पड़ा।
4: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you for more. I quickly want to cut across and bring in Mousmi Singh and Piyush Mishra for more. Remember, India Today has the biggest team of reporters on ground to get you a 360-degree perspective on the day's developments. Mousmi, both you and Piyush were on the streets of Delhi covering initially the protests, then the mob violence, the vandalism, and even inside Parliament, there was a lot of ruckus. Mousmi, is the situation completely under control now? Opposition leaders are accusing the government of not letting the opposition even have its say in parliament.
5: Gaurav, I can just say what I saw through my own eyes and report that there were nervous moments for the parliament security. I saw them running towards the Rail Bhavan, where I was stationed for 2-3 hours, and I was, in fact, one of the very first people to spot that the crowd, the mob had reached Rail Bhavan. Now, that's the last tier of security. And you just have the main southern utility gate 50 meters away from that barricade where there was a huge mob. And that was the mob that had crossed over from Raisena Marg to almost the entrance of the parliament premises, and you could see the parliament from behind. Importantly, you know, when the crowd stayed there, the police used tear gas to disperse the crowd. I saw a huge number of protesters, and they were young people, they were students, who seemed to be in class 11, 12, in college, and students, scholars, and they were all not organized. I didn't see an organized crowd. They were coming in spades, in small numbers, in hordes somewhere, and they were all along the Kartavya Path. But a similar scene that we saw during the Nirbhaya agitation. And then the police had to use baton and lathi charge at some groups to disperse the crowd. We saw those visuals also unfold. And likely, you know, it's not a very good day for the government because it's the first day of the monsoon session. And as we just saw that Rahul Gandhi has now stepped in to this entire state that you've used lathi charge on students and tear gas on students.
4: Absolutely. Piyush, as far as the government is concerned, you know, you had opposition leaders like Shashi Tharoor say, have a discussion in parliament unless you let parliamentarians have their say in parliament, you'll have violence on the streets. You can either speak in parliament or the street speaks. Is the government hesitating, reluctant on for a discussion on this issue in parliament?
6: Well, Gaurav, what we are now learning from our sources is that the government is keeping a very close watch on all the developments. We know that since early in the morning at around 9 o'clock, we saw a huddle taking place in parliament. Senior leaders of the Modi government had already reached around 9 a.m. in the parliament. And after that, a series of meetings happened. When the crowd got really angry and violent, we saw a meeting taking place between, Home Minister Amit Shah and Union Health Minister J.P. Nadda in Parliament. And soon after that, at around 11:50, we saw J.P. Nadda leaving Parliament and heading towards his home. And then we got to know that a meeting has been planned between the spokespersons of CJP and Union Health Minister J.P. Nadda. Soon after that, there was a meeting which happened in the Parliament also. And in that meeting, at around 1 o'clock, we saw Union Education Minister Dharmendra Pradhan reaching, and then Parliament Affairs Minister Kiran Rijiju also participated, and after that, Piyush Goyal also came. So this meeting with Home Minister Amit Shah went on for around 4 hours. So one thing is clear, the government wants to talk with the protesters, and that's why a door has already been opened. We saw the pictures that have surfaced of J.P. Nadda meeting with spokespersons of CJP, and the government has assured them that yes, government is looking into their demands, and government has also requested the protesters to end their protest and let the cordial environment be there. One thing is clear that government does not want to rubbish the claims of rubbish the demands of these protesters, and that's why what we are told is that today in series of meetings, one thing has been finalized, one thing has been charted, that government is likely to issue a detailed statement on the kind of deliberations those are now going on with them.
4: You're saying four-hour-long meeting. Himanshu has been tracking that meeting very closely. Himanshu, Grih Mantri ke saath Shiksha Mantri ki bhi mulaqat hui. Usme Sansadiya Karya Mantri bhi maujood the. Ye jo aur Commerce Minister Piyush Goyal bhi usme the. Usme jo puri charcha hui, kya usse nikal kar aaya hai? Sarkar ke liye kya ye samasya badi hoti ja rahi hai? Kaise sarkar is mudde se deal karegi? Dharmendra Pradhan ke istife par adi hui hai Cockroach Janata Party aur Bharat ka vipaksh.
7: Dekhiye bilkul Gaurav, is pe koi do raaye nahi hai ki jo CJP ki demand hai उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिन 20 छात्रों ने सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ पे मुआवजा देने की बात है, साथ ही सोनम वांगचू को रिलीज करने की बात है। एक चीज मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार नहीं मानने वाली, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस दिया भी नहीं गया है। जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई सीजेपी के दो रिप्रेजेंटेटिव की, दो राउंड मुलाकात हुई, फर्स्ट राउंड में वो कोई डिमांड लेकर नहीं आए थे ऑन रिटर्न, उनसे कहा गया आप रिटर्न में लेकर आइए, फिर वो वहां पे रहे और उनके पास रिटर्न जो भी उनका मेमोरेंडम था उस मेमोरेंडम को उन्होंने मंगाया, फिर वहां पे प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो फिर से मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने अपनी मांग को रखा। सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि जो आपकी मांगे हैं इस पे सरकार विचार करेगी या कुछ ऐसा है। तो बड़ी चीज ये है कि सरकार ने मुलाकात की है, सरकार को लगता है जो कुछ आज हुआ वो एक तरीके से जो है एक जो भी प्रोटेस्टर थे वो गुस्से में थे, उनका गुस्सा थोड़ा फ्रेज आउट हुआ है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि सीजेपी के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो हिंसक तस्वीरें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं बताती हैं कि दिल्ली पुलिस को क्यों जो है टियर गैस छोड़ना पड़ा या लाठी चार्ज करना पड़ा। उसका बड़ा कारण ये है कि बीएनएस में 163 के अंदर तहत जो है वो 144 जो लगता था धारा 144 के तहत, चार लोग नहीं इकट्ठे हो सकते थे, वो 163 है उसमें अगर आप इकट्ठे होंगे और अगर इस लुटियन जोन में ड्यूरिंग इन पार्लियामेंट सेशन वो बैन था, और उसी लिए जो है इस तरीके की सिचुएशन बनी और सरकार की तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया गया। इस पूरे मॉनिटरिंग को जो है खुद गृह मंत्री भी जो है वो नजर बनाए हुए थे लगातार, और जो इंस्ट्रक्शन देने थे वो दिए जा रहे थे।
4: रहिए मेरे साथ बिकॉज देयर इज अनदर एंगल टू दिस इन्वेस्टिगेशन एंड टू दीज डेवलपमेंट्स. आई वांट टू क्विकली कट अक्रॉस टू एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि आंगमोज पिटिशन इन द डेरी हाईकोर्ट. गीतांजलि आंगमो मूव द डेरी हाईकोर्ट सीकिंग He be transferred. So Sonam Wangchuk be transferred from Delhi Safdarjung Hospital to a private hospital. The Delhi High Court has backed the government's decision to shift Sonam Wangchuk to Safdarjung Hospital, ruling that the move was not either arbitrary or malafide given his deteriorating health. Wangchuk's wife, on the other hand, has challenged this order, saying that he should be taken to a private hospital. This case was mentioned before the Chief Justice of the Delhi High Court during the hearing. The court sought all medical records from Safdarjung Hospital, AIIMS and a private laboratory and then directed doctors at AIIMS and a physician who Wangchuk usually consults, Wangchuk's family physician, to be present at the next hearing, which will take place on Tuesday, which is tomorrow. The court said the primary concern was to save Sonam Wangchuk's life. It noted discrepancies in medical reports and observed these should have been shared with the family. Wangchuk's wife, she's argued that he was shifted from Jantar Mantar without informing the family. No medical reports were given to the family to justify the transfer. The center, however, informed the court that bodily autonomy is important. The state also has the right to protect Wangchuk's life. I want to quickly cut across to India Today's Anisha Mathur, who is tracking these developments in court. Anisha, what is the prayer of Wangchuk's wife and what did the court finally say?
8: Well, yes, Gaurav, see, we're seeing a very strange situation here in the High Court where Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, is saying that as an independent citizen of India, as a free citizen of India, they have the right to choose where they go for medical treatment. But Sonam Wangchuk is not being allowed to discharge himself or from Safdarjung or go to a different hospital. That was the argument taken yesterday before the special bench, or that heard.

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Some of the pictures I'm about to show you on this special broadcast are very disturbing, and we urge viewer discretion. Some of these are viral images that will form a part of Delhi police investigations into reports of attacks on Delhi police and Central Armed Police Forces in the national capital during this morning's Cockroach Janata Party protests. I want you to look at one picture in particular. Watch this video of the mob singling out a police official in uniform. Watch that image very carefully. A police officer is singled out, he's surrounded, and then he's thrashed. He's dragged to the ground and then assaulted. And this assault has been caught on camera. And this isn't the only assault that's been caught on camera. There are multiple videos of stone pelting on the security forces, including some where policemen were injured and are bleeding. Delhi police is now examining this footage. And on the basis of this footage and their investigations, we are told FIRs, or the first information report, is being registered in two incidents of stone pelting, attacks on police personnel, other acts of violence and vandalism during the CJP protests. Now, Cockroach Janata Party carried out a protest. The Delhi police, we are told, is registering multiple FIRs based on complaints they're receiving from different places. And more than 70 people, as of now, have been detained for questioning. That's the latest information that's coming in. More than 50 Delhi police personnel and Central Armed Police Forces personnel were injured in the mob violence. And all the CCTV images, mobile video images, viral videos, they are being compiled, they are being analysed. And those who are responsible for this violence, they are being identified. Several Delhi police and CAPF personnel were injured. A number of vehicles were damaged. Both public property was damaged, as you see in those images, and private property was damaged. There were instances of vandalization that took place and vandalism that took place near the Parliament Street police station. Protesters were seen pelting stones at the Delhi police and the RAF, the Rapid Action Force, near Delhi's Hanuman Mandir, Connaught Place's Hanuman Mandir. Visuals show relentless stone pelting directed at Delhi police and CAPF, Central Armed Police Force personnel. Security forces were forced to respond. Smoke canisters, or tear gas as we know them, smoke canisters were fired to disperse the protesters. Delhi police say there was a systematic campaign to spread rumours and incite passions. There were rumours on social media that a 12-year-old child was assaulted. Delhi police insist no children were assaulted. There were reports of multiple protesters being taken into custody and being injured. I'll get you much more on the rumour mongering, some of the social media handles and where these social media handles have been traced to. Listen in to the Delhi police. I'll get you much more on this big story.
1: Delhi police, सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है. सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें. जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें.
2: आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज यहाँ पर आप कर रही है. ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पार्लियामेंट थाने के बाहर. इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जो जो प्रोटेस्टर है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे. पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है. अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. रह रहकर टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी गई है और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके। ये जो मेन इलाका है सबसे ज्यादा प्रोटेस्टर यहीं पर जमा है, क्योंकि ये जो जंतर मंतर से, अगर आप ये देखें अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए अब ये पत्थर भी, पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे, ये देखिए पत्थर, वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। सीधे हम आपको जंतर मंतर और जो पार्लियामेंट थाना वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ है ये कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट की तरफ जाए, और पुलिस की यही कोशिश है कि ये प्रोटेस्टर जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ न जा पाए। तो लगातार अगर देखें तो पुलिस यहां पर हल्का बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े जा रहे हैं लगातार।
0: And amidst the clashes, the government has opened a channel of communication with the Kokroch Janata Party. Union Health Minister JP Nadda, earlier today, he met the CJP delegation in the national capital. Following this meeting, CJP representatives Saurav Das and Ashutosh Ranka, we are told they've submitted a written memorandum to the Union Health Minister. They've reiterated their demands. Their core demand remains the release of activist Sonam Wangchuk, with no restrictions whatsoever on his movements. The CJP also reiterated the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. They are also seeking a compensation of 1 crore each for the next of kin of the NEET aspirants who died by suicide after the NEET 2026 paper leak. The CJP requested that the Delhi police should stop using force against the protesters and not register cases against them. CJP Kokroch Janata Party founder Abhijit Deepke, who'd gone on a hunger strike after the detention of Sonam Wangchuk, ended his fast after this meeting. So listen in to CJP spokesperson Saurav Das after submitting that memorandum to Union Health Minister JP Nadda. I'll get you more on that story.
3: देखिए, दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha joining us with the latest on this big story. Arvind, Delhi police ki prarambhik jaanch mein abhi kya nikla hai? Is samay Rajdhani Delhi ki kya sthiti hai? Aur prarambhik jaanch mein abhi tak kya nikla hai?
2: देखिए गौरव, इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ और सुबह से इंडिया टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई फुटेज मिले हैं जिसमें मॉर्निंग में स्टोन पेल्टिंग हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, सीएपीएफ के जो जवान हैं उन पर अटैक हुआ। वो वीडियोस भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। फिलहाल जो उग्र भीड़ थी उसको डिसबर्स किया है, मिनिमम जो बल प्रयोग है उसका इस्तेमाल करके। और अब बात की जाए नई दिल्ली इलाके की, तो कुछ जनपद के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास प्रोटेस्टर जमा है और बहुत मुमकिन है कि उनको भी डिसबर्स कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीसफुली जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से इजाज़त है, वो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आज पूरे दिन भर की बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस पार्टी और सीएपीएफ पर अटैक हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रही है जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर। उसके अलावा इस मामले में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या इस सब के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई थी उसको आखिरकार कोई गाइड करने वाला नहीं था जब वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जनपद के आसपास जो बड़े बड़े शोरूम है उस पर अटैक कर रहे थे, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, तब उनको कोई काबू करने वाला नहीं था। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर थे वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और जब उनको लगा कि अब जरूरी है इनको डिसबर्स करना तभी किया गया। 5 जो सीनियर आईपीएस है वो भी इंजर्ड हुए हैं, 50 से ज़्यादा जो पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिला दें तो 50 से ज्यादा जो जवान है वो इंजर्ड है। और
4: अच्छा, लेकिन ये बताइए वो जो हमने तस्वीरें देखी अरविंद कि दिल्ली पुलिस का घेरा तोड़ते हुए ये भीड़ है जो संसद के पास तक दौड़ी है, एंड आई वांट टू शो यू इमेजेस फ्रॉम इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी केम रशिंग, आई वांट यू टू लुक एट दोज इमेजेस इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी दैट वाज रशिंग टू शट द गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अरविंद, क्या ये अंदेशा था कि वो संसद के अंदर घुस सकती है भीड़ और इसीलिए वो पार्लियामेंट के दरवाजों को, संसद के दरवाजों को ताला लगाना पड़ा? वो वाली तस्वीरें दिखाइए।
2: अब बिल्कुल देखिए गौरव, और जिस तरह की भीड़ थी और संसद मार्च का ऐलान था और जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये बता दिया था कि बीएनएस 163 यहाँ पर लगा हुआ है, पार्लियामेंट का मानसून सत्र वो चालू है, ये इलाका बेहद संवेदनशील है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके एक सुनियोजित भीड़ चारों तरफ इकट्ठा थी नई दिल्ली के इलाके के और खास तौर से संसद मार्ग, संसद भवन की तरफ जाने वाले रोड पर, और वो संसद भवन की तरफ आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वो एक जगह पर रुके थे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको रोके हुई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होकर जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन पर टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उनको काबू में करने की कोशिश की गई और बाद में उनको डिसबर्स किया गया। लेकिन ये बात सही है कि शास्त्री भवन, रेल भवन जो चंद कदमों की दूरी पर है संसद भवन से, वहां तक कुछ प्रोटेस्टर पहुंच गए थे, इस वजह से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस की सेल छोड़नी पड़ी और जो प्रोटेस्टर है उनको वहां से भगाना पड़ा।
4: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you for more. I quickly want to cut across and bring in Mousmi Singh and Piyush Mishra for more. Remember, India Today has the biggest team of reporters on ground to get you a 360-degree perspective on the day's developments. Mousmi, both you and Piyush were on the streets of Delhi covering initially the protests, then the mob violence, the vandalism, and even inside Parliament, there was a lot of ruckus. Mousmi, is the situation completely under control now? Opposition leaders are accusing the government of not letting the opposition even have its say in parliament.
5: Gaurav, I can just say what I saw through my own eyes and report that there were nervous moments for the parliament security. I saw them running towards the Rail Bhavan, where I was stationed for 2-3 hours, and I was, in fact, one of the very first people to spot that the crowd, the mob had reached Rail Bhavan. Now, that's the last tier of security. And you just have the main southern utility gate 50 meters away from that barricade where there was a huge mob. And that was the mob that had crossed over from Raisena Marg to almost the entrance of the parliament premises, and you could see the parliament from behind. Importantly, you know, when the crowd stayed there, the police used tear gas to disperse the crowd. I saw a huge number of protesters, and they were young people, they were students, who seemed to be in class 11, 12, in college, and students, scholars, and they were all not organized. I didn't see an organized crowd. They were coming in spades, in small numbers, in hordes somewhere, and they were all along the Kartavya Path, a similar scene that we saw during the Nirbhaya agitation. And then the police had to use baton and lathi charge at some groups to disperse the crowd. We saw those visuals also unfold. And likely, you know, it's not a very good day for the government because it's the first day of the monsoon session. And as we just saw that Rahul Gandhi has now stepped in to this entire state that you've used lathi charge on students and tear gas on students.
4: Absolutely. Piyush, as far as the government is concerned, you had opposition leaders like Shashi Tharoor say, have a discussion in parliament unless you let parliamentarians have their say in parliament, you'll have violence on the streets. You can either speak in parliament or the street speaks. Is the government hesitating, reluctant for a discussion on this issue in parliament?
6: Well, Gaurav, what we are now learning from our sources is that the government is keeping a very close watch on all the developments. We know that since early in the morning at around 9 o'clock, we saw a huddle taking place in parliament. Senior leaders of the Modi government had already reached around 9 a.m. in the parliament. And after that, a series of meetings happened. When the crowd got really angry and violent, we saw a meeting taking place between Home Minister Amit Shah and Union Health Minister J.P. Nadda in Parliament. And soon after that, at around 11:50, we saw J.P. Nadda leaving Parliament and heading towards his home. And then we got to know that a meeting has been planned between the spokespersons of CJP and Union Health Minister J.P. Nadda. Soon after that, there was a meeting which happened in the Parliament also. And in that meeting, at around 1 o'clock, we saw Union Education Minister Dharmendra Pradhan reaching, and then Parliament Affairs Minister Kiran Rijiju also participated, and after that Piyush Goyal also came. So this meeting with Home Minister Amit Shah went on for around 4 hours. So one thing is clear, that government wants to talk with the protesters, and that's why a door has already been opened. We saw the pictures which have surfaced of J.P. Nadda meeting with spokespersons of CJP, and the government has assured them that yes, government is looking into their demands, and government has also requested the protesters to end their protest and let the cordial environment be there. One thing is clear, that government does not want to rubbish the claims of rubbish the demands of these protesters, and that's why what we are told is that today in series of meetings, one thing has been finalized, one thing has been charted, that government is likely to issue a detailed statement on the kind of deliberations those are now going on with them.
4: You're saying 4 hour long meeting. Himanshu's been tracking that meeting very closely. Himanshu, Grih Mantri ke saath Shiksha Mantri ki bhi mulaqat hui, usme Sansadiya Karya Mantri bhi maujood the, ye jo aur Commerce Minister Piyush Goyal bhi usme the, usme jo puri charcha hui, kya usse nikal kar aaya hai? Sarkar ke liye kya ye samasya badi hoti ja rahi hai? Kaise sarkar is mudde se deal karegi? Dharmendra Pradhan ke istifay par adi hui hai Cockroach Janata Party aur Bharat ka vipaksh.
7: Dekhiye bilkul Gaurav, ispe koi do raaye nahi hai ki jo CJP ki demand hai उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिन 20 छात्रों ने सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ पे मुआवजा देने की बात है, साथ ही सोनम वांगचू को रिलीज करने की बात है। एक चीज मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार नहीं मानने वाली, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस दिया भी नहीं गया है। जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सीजेपी के दो रिप्रेजेंटेटिव की दो राउंड मुलाकात हुई, फर्स्ट राउंड में वो कोई डिमांड लेकर नहीं आए थे ऑन रिटर्न, उनसे कहा गया आप रिटर्न में लेकर आइए, फिर वो वहां पे रहे और उनके पास रिटर्न जो भी उनका मेमोरेंडम था उस मेमोरेंडम को उन्होंने मंगाया, फिर वहां पे प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो फिर से मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने अपनी मांग को रखा। सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि जो आपकी मांगे हैं इस पे सरकार विचार करेगी या कुछ ऐसा है। तो बड़ी चीज ये है कि सरकार ने मुलाकात की है, सरकार को लगता है जो कुछ आज हुआ वो एक तरीके से जो है एक जो भी प्रोटेस्टर थे वो गुस्से में थे, उनका गुस्सा थोड़ा फ्रेज आउट हुआ है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि सीजेपी के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो हिंसक तस्वीरें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं बताती हैं कि दिल्ली पुलिस को क्यों जो है टियर गैस छोड़ना पड़ा या लाठीचार्ज करना पड़ा। उसका बड़ा कारण ये है कि BNS में 163 के अंदर तहत जो है वो 144 जो लगता था धारा 144 के तहत, चार लोग नहीं इकट्ठे हो सकते थे, वो 163 है उसमें अगर आप इकट्ठे होंगे और अगर इस लुटियन जोन में ड्यूरिंग इन पार्लियामेंट सेशन वो बैन था, और उसी लिए जो है इस तरीके की सिचुएशन बनी और सरकार की तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया गया। इस पूरे मॉनिटरिंग को जो है खुद गृह मंत्री भी जो है वो नजर बनाए हुए थे लगातार, और जो इंस्ट्रक्शन देने थे वो दिए जा रहे थे।
4: Rahiye mere saath, because there's another angle to this investigation and to these developments. I want to quickly cut across to activist Sonam Wangchuk's wife Geetanjali Angmo's petition in the Delhi High Court. Geetanjali Angmo moved the Delhi High Court seeking he be transferred. So Sonam Wangchuk be transferred from Delhi Safdarjung Hospital to a private hospital. The Delhi High Court has backed the government's decision to shift Sonam Wangchuk to Safdarjung Hospital, ruling that the move was not either arbitrary or malafide given his deteriorating health. Wangchuk's wife, on the other hand, has challenged this order, saying that he should be taken to a private hospital. This case was mentioned before the Chief Justice of the Delhi High Court during the hearing. The court sought all medical records from Safdarjung Hospital, AIMS and a private laboratory, and then directed doctors at AIMS and a physician who Wangchuk usually consults, Wangchuk's family physician, to be present at the next hearing, which will take place on Tuesday, which is tomorrow. The court said the primary concern was to save Sonam Wangchuk's life. It noted discrepancies in medical reports and observed these should have been shared with the family. Wangchuk's wife, she's argued that he was shifted from Jantar Mantar without informing the family. No medical reports were given to the family to justify the transfer. The centre, however, informed the court that bodily autonomy is important. The state also has the right to protect Wangchuk's life. I want to quickly cut across to India Today's Anisha Mathur, who is tracking these developments in court. Anisha, what is the prayer of Wangchuk's wife and what did the court finally say?
8: Well, yes, Gaurav, see, we're seeing a very strange situation here in the High Court where Sonam Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, is saying that as an independent citizen of India, as a free citizen of India, they have the right to choose where they go for medical treatment. But Sonam Wangchuk is not being allowed to discharge himself or from Safdarjung or go to a different hospital. That was the argument taken yesterday before the special bench or that heard this matter on Sunday. And it is the same argument that is being taken today before the two judges bench, that they do not have full confidence in the treatment that is being given at Safdarjung, that they are apprehensive that some forced medical intervention will be forced on Sonam Wangchuk, and that Geetanjali Angmo particularly arguing that when she had asked for her husband's medical reports and the blood samples to get a second opinion, she was not allowed to do so till much later at night, and therefore she is saying that I do not believe that my husband will be treated properly, that I do not believe that we should be forced to stay in this particular hospital. On the other hand, the government of India is saying that Sonam Wangchuk's health condition will have a direct impact on what has happened outside, that the situation is volatile, and that is what justification the government is given to keep him in Safdarjung Hospital. Now, tomorrow, that is Tuesday, is when the High Court will hear this matter again with all the medical reports on record. So we'll have to see what happens next.
4: Anisha, keep writing that story. I will come back to you for more. India Today has the biggest team of reporters on ground, getting you a 360-degree perspective of these latest developments. Now, the monsoon session of Parliament clearly began on a very stormy note. There's high political drama both outside and inside the Parliament. The opposition brought proceedings in both houses of Parliament to a standstill. They demanded discussion on key issues, including the Sri Ram Mandir donation theft and the paper leak controversy. Slogans, placards, repeated disruptions. They forced multiple adjournments even as the government appealed for a constructive debate. But before the session began, Prime Minister Narendra Modi urged members of parliament to engage in fact-based discussions. Despite repeated appeals by Lok Sabha Speaker Om Birla to restore order, the deadlock continued, although the government went ahead and introduced the Supreme Court Judges Amendment Bill. Our Political Bureau brings you our top story.
9: Fireworks inside Parliament on the very first day of the monsoon session. The opposition stormed the well in both Lok Sabha and Rajya Sabha, raising slogans and displaying placards in protest against the government. Just before the session began, Prime Minister Narendra Modi had called for fact-based logical debates. Modi also took a veiled swipe at leader of opposition Rahul Gandhi while praising Skyroot and India's growing space capabilities, saying he was referring to 28-year-old youngsters and not any 56-year-old.
10: ये जो Skyroot startup है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया, उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है. ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है. मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं.
9: Later, amid the showdown in Lok Sabha, Speaker Om Birla appealed for calm and urged members to allow the house to function. But the request fell on deaf ears.
11: प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां ले रहना उचित नहीं है. आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं. प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
9: When the house convened again, the chaos continued. Amid the din, Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Judges Amendment Bill 1956.
12: Honorable Chairperson, sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956.
9: The opposition, however, was firm on its demand for a discussion on the alleged Ram Mandir donation theft and the paper leak.
13: लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है.

0: What began as a campaign to save trees has now become a larger conversation on sustainable development.
1: Pollution, pollution! Trees
0: are solution! Facing growing protests from environmentalists, local communities and social organizations, the Uttarakhand government has temporarily halted the proposed felling of thousands of trees for the Rishikesh Highway widening project. Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that while development was necessary, no decision would be taken at the cost of public sentiment, the environment or the interests of the local communities. Protesters insisted that they are not against better roads, they are against irreversible environmental damage. Their demand is clear. Explore an alternative alignment for the highway to minimize environmental damage. Conservationists say expanding the highway could increase traffic speeds and put wildlife at risk.
2: इस रोड में ज्यादा ट्रैफिक तो लगता है नहीं, इसको हाईवे बनाने की सोच रहे हैं ये, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको हाईवे बनाने की जरूरत है नहीं इसमें, जहाँ जरूरत होती है वहाँ तो ये कर नहीं रहे, बाकी यहाँ पेड़ों को काटे जा रहे हैं।
3: मेरा तो सरकार से एक ही आग्रह है कि आपने विकास के नाम पर जो ये विनाश का तांडव कर रहे हैं, ये सरासर जो है स्थानीय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप 10 मिनट की जर्नी बचाने के लिए 3000 पेड़ों को जो है आप जीवन दान वो खत्म कर रहे हो, जीनों को। एक तरफ आप बोलते हो एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ आप 3000 पेड़ बाप के नाम कटवा दे रहे हो।
0: Earlier on Friday, Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi met activists in Dehradun, heard their concerns and promised to raise the matter in Parliament.
4: सर हमारे सब पे केस ठोक रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं।
0: The government has paused the project while it reviews public concerns. But with development on one side and ecology on the other, the road ahead remains anything but straightforward. Bureau Report, India Today.
5: मत लो इन पेड़ों

0: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Some of the pictures I'm about to show you on this special broadcast are very disturbing, and we urge viewer discretion. Some of these are viral images that will form a part of Delhi police investigations into reports of attacks on Delhi police and Central Armed Police Forces in the national capital during this morning's Cockroach Janata Party protests. I want you to look at one picture in particular. Watch this video of the mob singling out a police official in uniform. Watch that image very carefully. A police officer is singled out. He's surrounded and then he's thrashed. He's dragged to the ground and then assaulted. And this assault has been caught on camera. And this isn't the only assault that's been caught on camera. There are multiple videos of stone pelting on the security forces, including some where policemen were injured and are bleeding. Delhi police is now examining this footage. And on the basis of this footage and their investigations, we are told FIRs, or the first information report, is being registered in two incidents of stone pelting, attacks on police personnel, other acts of violence and vandalism during the CJP protests. Now, Cockroach Janata Party carried out a protest. The Delhi police, we are told, is registering multiple FIRs based on complaints they're receiving from different places. And more than 70 people, as of now, have been detained for questioning. That's the latest information that's coming in. More than 50 Delhi police personnel and Central Armed Police Forces personnel were injured in the mob violence. And all the CCTV images, mobile video images, viral videos, they are being compiled, they are being analyzed. And those who are responsible for this violence, they are being identified. Several Delhi police and CAPF personnel were injured. A number of vehicles were damaged. Both public property was damaged, as you see in those images, and private property was damaged. There were instances of vandalization that took place and vandalism that took place near the Parliament Street police station. Protesters were seen pelting stones at the Delhi police and the RAF, the Rapid Action Force, near Delhi's Hanuman Mandir, Connaught Place's Hanuman Mandir. Visuals show relentless stone pelting directed at Delhi police and CAPF, Central Armed Police Force personnel. Security forces were forced to respond. Smoke canisters, or tear gas as we know them, smoke canisters were fired to disperse the protesters. Delhi police say there was a systematic campaign to spread rumours and incite passions. There were rumours on social media that a 12-year-old child was assaulted. Delhi police insist no children were assaulted. There were reports of multiple protesters being taken into custody and being injured. I'll get you much more on the rumour mongering, some of the social media handles and where these social media handles have been traced to. Listen in to the Delhi police. I'll get you much more on this big story.
1: दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है. सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें. जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें.
2: आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज यहाँ पर आप कर रही है. ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पार्लियामेंट थाने के बाहर. इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जो जो प्रोटेस्टर है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे. पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है. अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. रह रहकर टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी गई है और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके। ये जो मेन इलाका है सबसे ज्यादा प्रोटेस्टर यहीं पर जमा है, क्योंकि ये जो जंतर मंतर से अगर आप ये देखें अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए अब ये पत्थर भी पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे ये देखिए ये पर पत्थर वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। सीधे हम आपको जंतर मंतर और जो पार्लियामेंट थाना वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ है ये कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट की तरफ जाए और पुलिस की यही कोशिश है कि ये प्रोटेस्टर जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ न जा पाए। तो लगातार अगर देखें तो पुलिस यहां पर हल्का बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े जा रहे हैं लगातार।
0: And amidst the clashes, the government has opened a channel of communication with the Kokrut Janta Party. Union Health Minister JP Nadda, earlier today, he met the CJP delegation in the national capital. Following this meeting, CJP representatives Saurav Das and Ashutosh Ranka, we are told they've submitted a written memorandum to the Union Health Minister. They've reiterated their demands. Their core demand remains the release of activist Sonam Wangchuk, with no restrictions whatsoever on his movements. The CJP also reiterated the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. They are also seeking a compensation of 1 crore each for the next of kin of the NEET aspirants who died by suicide after the NEET 2026 paper leak. The CJP requested that the Delhi police should stop using force against the protesters and not register cases against them. CJP Kokruch Janta Party founder Abhijit Deepke, who'd gone on a hunger strike after the detention of Sonam Wangchuk, ended his fast after this meeting. So listen in to CJP spokesperson Saurav Das after submitting that memorandum to Union Health Minister JP Nadda. I'll get you more on that story.
3: देखिए, दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे तीन डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर टू, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha joining us with the latest on this big story. Arvind, Delhi Police ki prarambhik jaanch mein abhi kya nikla hai? Is samay Rajdhani Delhi ki kya sthiti hai aur prarambhik jaanch mein abhi tak kya nikla hai?
2: देखिए गौरव, इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ और सुबह से इंडिया टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई फुटेज मिले हैं जिसमें मॉर्निंग में स्टोन पेल्टिंग हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, सीएपीएफ के जो जवान हैं उन पर अटैक हुआ। वो वीडियोस भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। फिलहाल जो उग्र भीड़ थी उसको डिसबर्स किया है मिनिमम जो बल प्रयोग है उसका इस्तेमाल करके। और अब बात की जाए नई दिल्ली इलाके की तो कुछ जनपद के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास प्रोटेस्टर जमा है और बहुत मुमकिन है कि उनको भी डिसबर्स कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीसफुली जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से इजाज़त है, वो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आज पूरे दिन भर की बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस पार्टी और सीएपीएफ पर अटैक हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रही है जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर। उसके अलावा इस मामले में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या इस सब के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई थी उसको आखिरकार कोई गाइड करने वाला नहीं था जब वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जनपद के आसपास जो बड़े बड़े शोरूम है उस पर अटैक कर रहे थे, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, तब उनको कोई काबू करने वाला नहीं था। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर थे वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और जब उनको लगा कि अब जरूरी है इनको डिसबर्स करना तभी किया गया। 5 जो सीनियर आईपीएस है वो भी इंजर्ड हुए हैं, 50 से ज़्यादा जो पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिला दे तो 50 से ज्यादा जो जवान है वो इंजर्ड है। और
4: अच्छा, लेकिन ये बताइए वो जो हमने तस्वीरें देखी अरविंद कि दिल्ली पुलिस का घेरा तोड़ते हुए ये भीड़ है जो संसद के पास तक दौड़ी है, एंड आई वांट टू शो यू इमेजेस फ्रॉम इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी केम रशिंग, आई वांट यू टू लुक एट दोज इमेजेस इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी दैट वाज रशिंग टू शट द गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अरविंद, क्या ये अंदेशा था कि वो संसद के अंदर घुस सकती है भीड़ और इसीलिए वो पार्लियामेंट के दरवाजों को, संसद के दरवाजों को ताला लगाना पड़ा? वो वाली तस्वीरें दिखाइए।
2: अब बिल्कुल देखिए गौरव, और जिस तरह की भीड़ थी और संसद मार्च का ऐलान था और जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये बता दिया था कि बीएनएस 163 यहाँ पर लगा हुआ है, पार्लियामेंट का मानसून सत्र वो चालू है, ये इलाका बेहद संवेदनशील है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके एक सुनियोजित भीड़ चारों तरफ इकट्ठा थी नई दिल्ली के इलाके के और खास तौर से संसद मार्ग, संसद भवन की तरफ जाने वाले रोड पर, और वो संसद भवन की तरफ आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वो एक जगह पर रुके थे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको रोके हुई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होकर जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन पर टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उनको काबू में करने की कोशिश की गई और बाद में उनको डिसबर्स किया गया। लेकिन ये बात सही है कि शास्त्री भवन, रेल भवन जो चंद कदमों की दूरी पर है संसद भवन से, वहां तक कुछ प्रोटेस्टर पहुंच गए थे, इस वजह से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस की सेल छोड़नी पड़ी और जो प्रोटेस्टर है उनको वहां से भगाना पड़ा।
4: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you for more. I quickly want to cut across and bring in Mousmi Singh and Piyush Mishra for more. Remember, India Today has the biggest team of reporters on ground to get you a 360-degree perspective on the day's developments. Mousmi, both you and Piyush were on the streets of Delhi covering initially the protests, then the mob violence, the vandalism, and even inside Parliament, there was a lot of ruckus. Mousmi, is the situation completely under control now? Opposition leaders are accusing the government of not letting the opposition even have its say in parliament.
5: Gaurav, I can just say what I saw through my own eyes and report that there were nervous moments for the parliament security. I saw them running towards the rail bhavan where I was stationed for 2-3 hours, and I was in fact one of the very first

0: What began as a campaign to save trees has now become a larger conversation on sustainable development.
1: Pollution, pollution! Trees are the
0: solution! Facing growing protests from environmentalists, local communities and social organizations, the Uttarakhand government has temporarily halted the proposed felling of thousands of trees for the Rishikesh Highway widening project. Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that while development was necessary, no decision would be taken at the cost of public sentiment, the environment or the interests of the local communities. Protesters insisted that they are not against better roads, they are against irreversible environmental damage. Their demand is clear. Explore an alternative alignment for the highway to minimize environmental damage. Conservationists say expanding the highway could increase traffic speeds and put wildlife at risk.
2: इस रोड में ज्यादा ट्रैफिक तो लगता है नहीं, इसको हाईवे बनाने की सोच रहे हैं ये, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनको हाईवे बनाने की जरूरत है नहीं इसमें, जहाँ जरूरत होती है वहाँ तो ये कर नहीं रहे, बाकी यहाँ पेड़ों को काटे जा रहे हैं।
3: मेरा तो सरकार से एक ही आग्रह है कि आपने विकास के नाम पर जो ये विनाश का तांडव कर रहे हैं, ये सरासर जो है स्थानीय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप 10 मिनट की जर्नी बचाने के लिए 3000 पेड़ों को जो है आप जीवन दान वो खत्म कर रहे हो, जीनों को। एक तरफ आप बोलते हो एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ आप 3000 पेड़ बाप के नाम कटवा दे रहे हो।
0: Earlier on Friday, Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi met activists in Dehradun, heard their concerns and promised to raise the matter in Parliament.
4: सर हमारे सब पे केस ठोक रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं।
0: The government has paused the project while it reviews public concerns. But with development on one side and ecology on the other, the road ahead remains anything but straightforward. Bureau Report, India Today.
5: मत लो इन पेड़ों की

0: Good evening. You're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Some of the pictures I'm about to show you on this special broadcast are very disturbing, and we urge viewer discretion. Some of these are viral images that will form a part of Delhi police investigations into reports of attacks on Delhi police and Central Armed Police Forces in the national capital during this morning's Cockroach Janata Party protests. I want you to look at one picture in particular. Watch this video of the mob singling out a police official in uniform. Watch that image very carefully. A police officer is singled out. He's surrounded and then he's thrashed. He's dragged to the ground and then assaulted. And this assault has been caught on camera. And this isn't the only assault that's been caught on camera. There are multiple videos of stone pelting on the security forces, including some where policemen were injured and are bleeding. Delhi police is now examining this footage. And on the basis of this footage and their investigations, we are told FIRs, or the first information report, is being registered into incidents of stone pelting, attacks on police personnel, other acts of violence and vandalism during the CJP protests. Now, Cockroach Janata Party carried out a protest. The Delhi police, we are told, is registering multiple FIRs based on complaints they're receiving from different places. And more than 70 people, as of now, have been detained for questioning. That's the latest information that's coming in. More than 50 Delhi police personnel and Central Armed Police Forces personnel were injured in the mob violence. And all the CCTV images, mobile video images, viral videos, they are being compiled, they are being analyzed. And those who are responsible for this violence, they are being identified. Several Delhi police and CAPF personnel were injured. A number of vehicles were damaged. Both public property was damaged, as you see in those images, and private property was damaged. There were instances of vandalization that took place and vandalism that took place near the Parliament Street police station. Protesters were seen pelting stones at the Delhi police and the RAF, the Rapid Action Force, near Delhi's Hanuman Mandir, Connaught Place's Hanuman Mandir. Visuals show relentless stone pelting directed at Delhi police and CAPF, Central Armed Police Force personnel. Security forces were forced to respond. Smoke canisters, or tear gas as we know them, smoke canisters were fired to disperse the protesters. Delhi police say there was a systematic campaign to spread rumors and incite passions. There were rumors on social media that a 12-year-old child was assaulted. Delhi police insist no children were assaulted. There were reports of multiple protesters being taken into custody and being injured. I'll get you much more on the rumor mongering, some of the social media handles and where these social media handles have been traced to. Listen in to the Delhi police. I'll get you much more on this big story.
1: Delhi police, सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है. सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें. जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें.
2: आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो लाठीचार्ज यहाँ पर आप कर रही है. ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पार्लियामेंट थाने के बाहर. इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जो जो प्रोटेस्टर है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे. पहले टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है उनमें भगदड़ मच गई है और जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो भीड़ को तितर बितर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है. अगर ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पार्लियामेंट थाने के बाहर का ये नजारा है और इस तरीके से चारों तरफ जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे. रह रहकर टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी गई है और हल्का जो बल प्रयोग है वो पुलिस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके। ये जो मेन इलाका है सबसे ज्यादा प्रोटेस्टर यहीं पर जमा है, क्योंकि ये जो जंतर मंतर से, अगर आप ये देखें अभी अभी जो टीयर गैस की एक टीयर सेल छोड़ी गई, ये देखिए ये दूसरी टीयर सेल आपको छोड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये सीधी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए अब ये पत्थर भी, पत्थर रितेश मिश्रा आप देखेंगे, ये देखिए पत्थर, वो पत्थरबाजी यहाँ पर हो रही है, और इस तरीके से टीयर गैस की सेल यहाँ पर छोड़ी जा रही है। सीधे हम आपको जंतर मंतर और जो पार्लियामेंट थाना वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ है ये कोशिश कर रही है कि पार्लियामेंट की तरफ जाए, और पुलिस की यही कोशिश है कि ये प्रोटेस्टर जो पार्लियामेंट है उसकी तरफ न जा पाए। तो लगातार अगर देखें तो पुलिस यहाँ पर हल्का बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं लगातार।
0: And amidst the clashes, the government has opened a channel of communication with the Kokhroj Janata Party. Union Health Minister JP Nadda, earlier today, he met the CJP delegation in the national capital. Following this meeting, CJP representatives Saurav Das and Ashutosh Ranka, we're told they've submitted a written memorandum to the Union Health Minister. They've reiterated their demands. Their core demand remains the release of activist Sonam Wangchuk, with no restrictions whatsoever on his movements. The CJP also reiterated the demand for the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. They are also seeking a compensation of 1 crore each for the next of kin of the NEET aspirants who died by suicide after the NEET 2026 paper leak. The CJP requested that the Delhi police should stop using force against the protesters and not register cases against them. CJP Kokhroj Janata Party founder Abhijit Dipke, who'd gone on a hunger strike after the detention of Sonam Wangchuk, ended his fast after this meeting. So listen in to CJP spokesperson Saurav Das after submitting that memorandum to Union Health Minister JP Nadda. I'll get you more on that story.
3: देखिए, दो बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था।
0: I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha joining us with the latest on this big story. Arvind, Delhi Police ki prarambhik jaanch mein abhi kya nikla hai? Is samay Rajdhani Delhi ki kya sthiti hai? Aur prarambhik jaanch mein abhi tak kya nikla hai?
2: देखिए गौरव, इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में हूँ और सुबह से इंडिया टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। दिल्ली पुलिस को ऐसे कई फुटेज मिले हैं जिसमें मॉर्निंग में स्टोन पेल्टिंग हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, सीएपीएफ के जो जवान हैं उन पर अटैक हुआ। वो वीडियोस भी इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है। फिलहाल जो उग्र भीड़ थी उसको डिस्बर्स किया है, मिनिमम जो बल प्रयोग है उसका इस्तेमाल करके। और अब बात की जाए नई दिल्ली इलाके की, तो कुछ जनपद के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास प्रोटेस्टर जमा है और बहुत मुमकिन है कि उनको भी डिस्बर्स कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पीसफुली जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से इजाज़त है, वो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आज पूरे दिन भर की बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस पार्टी और सीएपीएफ पर अटैक हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले में मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रही है, जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर। उसके अलावा इस मामले में अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या इस सबके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई थी उसको आखिरकार कोई गाइड करने वाला नहीं था जब वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जनपद के आसपास जो बड़े बड़े शोरूम है उस पर अटैक कर रहे थे, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, तब उनको कोई काबू करने वाला नहीं था। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर थे वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा और जब उनको लगा कि अब जरूरी है इनको डिस्बर्स करना तभी किया गया। 5 जो सीनियर आईपीएस है वो भी इंजर्ड हुए हैं, 50 से ज़्यादा जो पुलिस और सीएपीएफ के जवान मिला दे तो 50 से ज्यादा जो जवान है वो इंजर्ड है। और
4: अच्छा, लेकिन ये बताइए वो जो हमने तस्वीरें देखी अरविंद कि दिल्ली पुलिस का घेरा तोड़ते हुए ये भीड़ है जो संसद के पास तक दौड़ी है, एंड आई वांट टू शो यू इमेजेस फ्रॉम इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी केम रशिंग, आई वांट यू टू लुक एट दोज इमेजेस इनसाइड पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिक्योरिटी दैट वाज रशिंग टू शट द गेट्स ऑफ द पार्लियामेंट। अरविंद, क्या ये अंदेशा था कि वो संसद के अंदर घुस सकती है भीड़ और इसीलिए वो पार्लियामेंट के दरवाजों को, संसद के दरवाजों को ताला लगाना पड़ा? वो वाली तस्वीरें दिखाइए।
2: अब बिल्कुल देखिए गौरव, और जिस तरह की भीड़ थी और संसद मार्च का ऐलान था, और जबकि दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये बता दिया था कि बीएनएस 163 यहाँ पर लगा हुआ है, पार्लियामेंट का मानसून सत्र वो चालू है, ये इलाका बेहद संवेदनशील है, इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके एक सुनियोजित भीड़ चारों तरफ इकट्ठा थी नई दिल्ली के इलाके के और खास तौर से संसद मार्ग, संसद भवन की तरफ जाने वाले रोड पर, और वो संसद भवन की तरफ आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक वो एक जगह पर रुके थे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको रोके हुई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ उग्र होकर जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन पर टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उनको काबू में करने की कोशिश की गई और बाद में उनको डिस्बर्स किया गया। लेकिन ये बात सही है कि शास्त्री भवन, रेल भवन जो चंद कदमों की दूरी पर है संसद भवन से, वहां तक कुछ प्रोटेस्टर पहुंच गए थे, इस वजह से हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, टीयर गैस की सेल छोड़नी पड़ी और जो प्रोटेस्टर है उनको वहां से भगाना पड़ा।
4: Keep tracking that story, Arvind. I will come back to you for more. I quickly want to cut across and bring in Mousmi Singh and Piyush Mishra for more. Remember, India Today has the biggest team of reporters on ground to get you a 360-degree perspective on the day's developments. Mousmi, both you and Piyush were on the streets of Delhi covering initially the protests, then the mob violence, the vandalism, and even inside Parliament, there was a lot of ruckus. Mousmi, is the situation completely under control now? Opposition leaders are accusing the government of not letting the opposition even have its say in parliament.
5: Gaurav, I can just say what I saw through my own eyes and report that there were nervous moments for the parliament security. I saw them running towards the Rail Bhavan, where I was stationed for 2-3 hours, and I was, in fact, one of the very first people to spot that the crowd, the mob had reached Rail Bhavan. Now, that's the last tier of security. And you just have the main southern utility gate 50 meters away from that barricade where there was a huge mob. And that was the mob that had crossed over from Raisena Marg to almost the entrance of the parliament premises, and you could see the parliament from behind. Importantly, you know, when the crowd stayed there, the police used tear gas to disperse the crowd. I saw a huge number of protesters, and they were young people, they were students, who seemed to be in class 11, 12, in college, and students, scholars, and they were all not organized. I didn't see an organized crowd. They were coming in spades, in small numbers, in hordes somewhere, and they were all along the Kartavya Path, a similar scene that we saw during the Nirbhaya agitation. And then the police had to use baton and lathi charge at some groups to disperse the crowd. We saw those visuals also unfold. And likely, you know, it's not a very good day for the government because it's the first day of the monsoon session. And as we just saw that Rahul Gandhi has now stepped in to this entire state that you've used lathi charge on students and tear gas on students.
4: Absolutely. Piyush, as far as the government is concerned, you had opposition leaders like Shashi Tharoor say, have a discussion in parliament unless you let parliamentarians have their say in parliament, you'll have violence on the streets. You can either speak in parliament or the street speaks. Is the government hesitating, reluctant for a discussion on this issue in parliament?
6: Well, Gaurav, what we are now learning from our sources is that the government is keeping a very close watch on all the developments. We know that since early in the morning at around 9 o'clock, we saw a huddle taking place in parliament. Senior leaders of the Modi government had already reached around 9 a.m. in the parliament. And after that, a series of meetings happened. When the crowd got really angry and violent, we saw a meeting taking place between Home Minister Amit Shah and Union Health Minister J.P. Nadda in Parliament. And soon after that, at around 11:50, we saw J.P. Nadda leading Parliament and heading towards his home. And then we got to know that a meeting has been planned between the spokespersons of CJP and Union Health Minister J.P. Nadda. Soon after that, there was a meeting which happened in the Parliament also. And in that meeting, at around 1 o'clock, we saw Union Education Minister Dharmendra Pradhan reaching, and then Parliament Affairs Minister Kiran Rijiju also participated, and after that Piyush Goyal also came. So this meeting with Home Minister Amit Shah went on for around 4 hours. So one thing is clear, that government wants to talk with the protesters, and that's why a door has already been opened. We saw the pictures that have surfaced of J.P. Nadda meeting with spokespersons of CJP, and the government has assured them that yes, government is looking into their demands, and government has also requested the protesters to end their protest and let the cordial environment be there. One thing is clear, that government does not want to rubbish the claims of rubbish the demands of these protesters, and that's why what we are told is that today in series of meetings, one thing has been finalized, one thing has been charted, that government is likely to issue a detailed statement on the kind of deliberations those are now going on with them.
4: You're saying 4 hour long meeting. Himanshu's been tracking that meeting very closely. Himanshu, Grih Mantri ke saath Shiksha Mantri ki bhi mulaqat hui, usme Sansadiya Karya Mantri bhi maujood the, ye jo aur Commerce Minister Piyush Goyal bhi usme the, usme jo puri charcha hui, kya usse nikal kar aaya hai? Sarkar ke liye kya ye samasya badi hoti ja rahi hai? Kaise sarkar is mudde se deal karegi? Dharmendra Pradhan ke istifay par adi hui hai Cockroach Janata Party aur Bharat ka vipaksh.
7: देखिए बिल्कुल गौरव, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो सीजेपी की डिमांड है उनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिन 20 छात्रों ने सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ पे मुआवजा देने की बात है, साथ ही सोनम वांगचुक को रिलीज करने की बात है. एक चीज मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर सरकार नहीं मानने वाली, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस दिया भी नहीं गया है. जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, सीजेपी के दो रिप्रेजेंटेटिव की दो राउंड मुलाकात हुई, फर्स्ट राउंड में वो कोई डिमांड लेकर नहीं आए थे ऑन रिटर्न, उनसे कहा गया आप रिटर्न में लेकर आइए, फिर वो वहां पे रहे और उनके पास रिटर्न जो भी उनका मेमोरेंडम था उस मेमोरेंडम को उन्होंने मंगाया, फिर वहां पे प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो फिर से मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने अपनी मांग को रखा. सरकार की तरफ से एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि जो आपकी मांगे हैं इस पे सरकार विचार करेगी या कुछ ऐसा है. तो बड़ी चीज ये है कि सरकार ने मुलाकात की है, सरकार को लगता है जो कुछ आज हुआ वो एक तरीके से जो है एक जो भी प्रोटेस्टर थे वो गुस्से में थे, उनका गुस्सा थोड़ा फेज आउट हुआ है. लेकिन इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि सीजेपी के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो हिंसक तस्वीरें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं बताती हैं कि दिल्ली पुलिस को क्यों जो है टियर गैस छोड़ना पड़ा या लाठी चार्ज करना पड़ा. उसका बड़ा कारण ये है कि बीएनएस में 163 के अंदर तहत जो है वो 144 जो लगता था धारा 144 के तहत, चार लोग नहीं इकट्ठे हो सकते थे, वो 163 है उसमें अगर आप इकट्ठे होंगे और अगर इस लुटियन जोन में ड्यूरिंग इन पार्लियामेंट सेशन वो बैन था, और उसी लिए जो है इस तरीके की सिचुएशन बनी और सरकार की तरफ से पूरा मॉनिटरिंग किया गया. इस पूरे मॉनिटरिंग को जो है खुद गृह मंत्री भी जो है वो नजर बनाए हुए थे लगातार, और जो इंस्ट्रक्शन देने थे वो दिए जा रहे थे.
4: रहिए मेरे साथ बिकॉज देयर इज अनदर एंगल टू दिस इन्वेस्टिगेशन एंड टू दीज डेवलपमेंट्स. आई वांट टू क्विकली कट अक्रॉस टू एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि आंगमोज पिटिशन इन द डेली हाईकोर्ट. गीतांजलि आंगमो मूव द डेली हाईकोर्ट सीकिंग ही बी ट्रांसफर्ड. सो सोनम वांगचुक बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेली सफदरजंग हॉस्पिटल टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल. द डेली हाईकोर्ट हैज बैक्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू शिफ्ट सोनम वांगचुक टू सफदरजंग हॉस्पिटल, ruling that the move was not either arbitrary or malafide given his deteriorating health. Wangchuk's wife, on the other hand, has challenged this order, saying that he should be taken to a private hospital. This case was mentioned before the Chief Justice of the Delhi High Court during the hearing. The court sought all medical records from Safdarjung Hospital, AIIMS and a private laboratory, and then directed doctors at AIIMS and a physician who Wangchuk usually consults, Wangchuk's family physician, to be present at the next hearing, which will take place on Tuesday, which is tomorrow. The court said the primary concern was to save Sonam Wangchuk's life. It noted discrepancies in medical reports and observed these should have been shared with the family. Wangchuk's wife, she's argued that he was shifted from Jantar Mantar without informing the family. No medical reports were given to the family to justify the transfer. The center, however, informed the court that bodily autonomy is important. The state also has the right to protect Wangchuk's life. I want to quickly cut across to India Today's Anisha Mathur, who is tracking these developments in court. Anisha, what is the prayer of Wangchuk's wife and what did the court finally say?
8: Well, yes, Gaurav, see, we're seeing a very strange situation here in the High Court where Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, is saying that as an independent citizen of India, as a free citizen of India, they have the right to choose where they go for medical treatment. But Sonam Wangchuk is not being allowed to discharge himself or from Safdarjung or go to a different hospital. That was the argument taken yesterday before the special bench or that heard this matter on Sunday. And it is the same argument that is being taken today before the two judges bench, that they do not have full confidence in the treatment that is being given at Safdarjung, that they are apprehensive that some forced medical intervention will be forced on Sonam Wangchuk, and that Gitanjali Angmo particularly arguing that when she had asked for her husband's medical reports and the blood samples to get a second opinion, she was not allowed to do so till much later at night, and therefore she is saying that I do not believe that my husband will be treated properly, that I do not believe that we should be forced to stay in this particular hospital. On the other hand, the government of India is saying that Sonam Wangchuk's health condition will have a direct impact on what has happened outside, that the situation is volatile, and that is what justification the government is given to keep him in Safdarjung Hospital. Now, tomorrow, that is Tuesday, is when the High Court will hear this matter again with all the medical reports on record. So we'll have to see what happens next.
4: Anisha, keep writing that story. I will come back to you for more. India Today has the biggest team of reporters on ground, getting you a 360-degree perspective of these latest developments. Now, the monsoon session of Parliament clearly began on a very stormy note. There was high political drama both outside and inside the Parliament. The opposition brought proceedings in both houses of Parliament to a standstill. They demanded discussion on key issues, including the Sri Ram Mandir donation theft and the paper leak controversy. Slogans, placards, repeated disruptions. They forced multiple adjournments even as the government appealed for a constructive debate. But before the session began, Prime Minister Narendra Modi urged members of parliament to engage in fact-based discussions. Despite repeated appeals by Lok Sabha Speaker Om Birla to restore order, the deadlock continued, although the government went ahead and introduced the Supreme Court Judges Amendment Bill. Our Political Bureau brings you our top story.
9: Fireworks inside Parliament on the very first day of the monsoon session. The opposition stormed the well in both Lok Sabha and Rajya Sabha, raising slogans and displaying placards in protest against the government. Just before the session began, Prime Minister Narendra Modi had called for fact-based logical debates. Modi also took a veiled swipe at Leader of Opposition Rahul Gandhi while praising Skyroot and India's growing space capabilities, saying he was referring to 28-year-old youngsters and not any 56-year-old.
10: ये जो Skyroot startup है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया, उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है, वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ।
9: Later, amid the showdown in Lok Sabha, Speaker Om Birla appealed for calm and urged members to allow the house to function. But the request fell on deaf ears.
11: प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लेराना उचित नहीं है. आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं. प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
9: When the House convened again, the chaos continued. Amid the din, Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Judges Amendment Bill 1956.
12: Honorable Chairperson, sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956.
9: The opposition, however, was firm on its demand for a discussion on the alleged Ram Mandir donation theft and the paper leak.
13: लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है.
9: With 19 sittings scheduled in the monsoon session till August 13th, the coming days will test whether Parliament delivers legislation and debates or more disruptions. Bureau Report, India Today.
4: There is no denying the fact that paper leaks are unacceptable, and there has to be the strongest possible action as per law against the perpetrators of paper leaks to ensure that it doesn't remain a flourishing industry in India. Nothing is more precious to us than the future of our youth. Zero tolerance for paper leak. But at the same time, are paper leak protests being hijacked by political parties and vested interests to peddle their agenda? Somebody brings in Article 370. Somebody brings in other issues. And what explains this violence and vandalism? Democracy, yes. Vandalism and violence and mobocracy, absolutely no. Joining me on India First is Jebi Matha, Member of Parliament, Rajya Sabha of the Congress Party, R.P. Singh, National Spokesperson of the BJP. Subrastha is an author and political analyst, as is Saira Shah Haleem, author and activist. Welcome. Jebi Matha, the entire nation is united in demanding action against the paper leak racket and those involved in it. But, ma'am, when you look at these images of violence, vandalism, stone pelting, clearly that cannot be acceptable. Ms. Matha, can you hear me?
14: Yeah, I didn't hear the last part, but from the first part, what I heard, I will give my reply. First and foremost, what the Delhi Capitol witnessed today, this kind of attack on students, lathi charge, tear gas, smoke, and the arrest, and this kind of action by the police, Sven, you should understand the frustration of the youth. You should